जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत, जी राम जी, गांव बढ़ेगा।

किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक छोटा बच्चा है, नाम है आरव। वो रोज स्कूल जाते वक्त एक पेड़ के नीचे बैठता है अकेले चुपचाप। क्लास के कुछ बच्चे रोज उसका मजाक उड़ाते थे। तेरा बैग कितना पुराना है, तेरे जूते घिस गए। शुरू में आरव रोता था, उदास रहता था, लेकिन एक दिन उसकी दादी ने उससे कहा, बेटा हर बाग में कुछ कांटे होते हैं, लेकिन अगर तू हर दिन कांटों से ही उलझता रहेगा तो फूलों की खूबसूरती कभी देख नहीं पाएगा। बस उस दिन से आरव ने अपना ध्यान उन बच्चों की बातों से हटाकर पढ़ाई में लगा दिया। उसने एक भी जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मेहनत करता रहा। क्लास के आखिर में जब रिजल्ट आया तो वही आरव टॉप पर था, और जिन लोगों ने उसे गिराने की कोशिश की थी वो सब पीछे छूट गए थे। जिंदगी में बिना तो कुछ लोग हमेशा आपकी एनर्जी चूसेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखना वो क्या कहते हैं ना, बदले में जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। तो इस मंडे अपने माइंड को साफ रखिए और उन लोगों से थोड़ा दूर रहिए जो सिर्फ शिकायत लेकर आते हैं, क्योंकि आपका समय और आपकी पॉजिटिविटी बहुत कीमती है। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा और मंडे से नई शुरुआत करने की कोशिश कीजिएगा। यही थी आज की मंडे वाली कहानी किस्सों का कारवा में। सुनते रहिए आरजे अदनान के साथ किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: गुड मॉर्निंग आरजे अदनान, तुमच्या सोबत आहे इन द शो.
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमटीएम 90.8 एफएम. और इस वक्त ना तो हम एक गेम खेलते हैं जिसमें बहुत मजा आता है यार, क्योंकि गेम का नाम ही इतना बढ़िया है.
2: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी.
0: और पहलिया तो जिंदगी हमारी बुझाई रही है, सुझाई रही है. पहलिया तो अपनी जिंदगी में चल रही है, लेकिन एक गिफ्ट जीतने की पहली कुछ अलग होती है. तो आज गिफ्ट जीतने के लिए मैं आपको एक पहली पूछूंगा और आप मुझे उसका सही जवाब बताना कि वो कौन है जिसके पास कभी तो दर्जनों कपड़े होते हैं और कभी एक भी नहीं. वो कौन है जिसके पास कभी तो दर्जनों कपड़े होते हो लेकिन कभी एक भी नहीं होता है, और इसमें कपड़े बहुत साफ निकलते. अब ये बताइए क्या है. इतना बड़ा मैंने हिंट भी दे दिया. जवाब व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 पर. मेरे पहलिया बहुत आसान होते हैं तो जवाब भी जल्दी से जल्दी दिया कीजिएगा, इंतजार मत करवाइएगा. 9359320080 नंबर फिर से एक बार याद रखिएगा, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ सुनते रहिएगा.
1: ऑल

हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गए।

0: में फिर अपना अपना हाथ, उसने खींचा मैंने खींचा, आहा हा। हम थे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: वेलकम बॅक, यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान तुमच्या सोबत आहे, आपल्या सोबत आहेत मानसोपचार आणि व्यसनमुक्ती तज्ञ डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर, और सर के साथ आज हम यूथ के मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं।
2: और सर कैसे पता चले कि नॉर्मल स्ट्रेस और सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यू में क्या फर्क हो सकता है?
3: देखो अभी क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस देखो मैं वैसे बताऊं कि स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो ऐसा को स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता है, और हर किसी के लाइफ में है, किसी को फैमिली रिलेटेड है, किसी को फाइनेंशियल है, किसी को एकेडमिक है, किसी को करियर रिलेटेड या वर्क प्लेस पे ज्यादा स्ट्रेस, बट स्ट्रेस इज योर पार्ट ऑफ लाइफ, वो रहने वाला है, वो लाइफ का पार्ट है, वो हमेशा रहने वाला है, बस उसका जो कंटेंट है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा। जैसे वो कभी आज मुझे करियर रिलेटेड है, मुझे कल पढ़ाई का होगा, परसों फाइनेंशियल रिलेटेड होगा, तीसरा मुझे मेरे रिलेशनशिप के लेकर होगा, ये चीजें चलते रहेगी। सो क्या है कि ये स्ट्रेस होना थोड़ा जरूरी भी है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस रहा तो वो एक्टिंग फोर्स काम करता है हमारे लिए। अगर स्ट्रेस नहीं रहा है, दूसरे दिन एग्जाम में अगर मैं आज स्ट्रेस नहीं लूं तो मैं पढ़ूंगा नहीं ना, तो इट इज एन एक्टिवेटिंग फोर्स, वो थोड़ा जरूरी होता है। बट स्ट्रेस जब हावी होता है मीन्स आप परसिस्टेंटली वो थॉट आपके दिमाग से नहीं जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे आप उसी थॉट में रहते हो, और जिसके वजह से आपको बेचैनी होना, हमेशा डिप्रेस या सैड फील होना, या नींद नहीं आना, ये जब चीजें होती है, या गुस्सा बढ़ जाना, या फिर बिल्कुल शांत हो जाना, ये सब चीजें होने लगती है, तब थोड़ा समझना है कि नाउ स्ट्रेस इज ओवरवेलमिंग, नाउ आपका स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी कम हो या फिर स्ट्रेस का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है। सो दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर कि लाइफ में स्ट्रेस थोड़ा जरूरी है, बट वो हावी होता है और ये सब चीजें आती, तो समझना कि यस नाउ दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। हाँ जी,
2: कभी कभार स्ट्रेस होना भी जरूरी है,
3: एक लिमिट में,
2: यस।
1: सो ये सब बातें याद रखिएगा किस

0: आता इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम.
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891-7844.
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University Institute Kochitrapati Sambhajinagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatat new advanced technology hi shikhnyas milel. Shivay vividha namankit companyan madhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025 to 26.

वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है, हम तो तेरे आशिक है। तो चलिए फिर अब प्रशांत जी की फरमाइश पर ये गाना प्ले करते हैं। आणि हो तुमची सुद्धा काही फरमाइश असेल तर आम्हाला व्हाट्सअप करून नक्की कळवा 9359320080 या व्हाट्सअप नंबरवर, क्योंकि यहाँ पर आपकी फरमाइश पूरी होगी इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बाकी तो अब प्रशांत जी की फरमाइश पर ये अगला गाना, स्टे ट्यून।

ऊपर से तो पैसा आता है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन काम शुरू ही नहीं होता, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। हेलो, माय सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। गवर्नमेंट कहती है कि यार हमने तो आपके नेताओं को पैसा दिया है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन काम क्यों नहीं शुरू हुआ यह आम आदमी को पता ही नहीं चलता था। यू नो व्हाट, पिछले 3 साल के अंदर अपने शहर के डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े नेताओं को, आमदार खासदारों को तकरीबन 200 करोड़ से भी ज्यादा गवर्नमेंट फंड आया है, और काम धीरे धीरे शुरू है, और कुछ काम बहुत पेंडिंग है, और काम शुरू होते लेकिन बहुत लेट काम शुरू होते, पेंडिंग रहते हैं। एंड देखो, कोई भी डेवलपमेंट का काम अगर शहर में करना है तो महानगर पालिका की उनको परमिशन लेना कंपलसरी है, दैट्स कॉल्ड एनओसी। अब एनओसी क्या होता है पता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप कोई भी काम आप कर सकते हैं। एंड एनओसी मिलने के बाद भी काम डिले हो रहा था, तो महानगर पालिका ने एक डिसीजन लिया है कि जिस काम के लिए जिसको एनओसी दिया जाएगा वो काम एनओसी मिलने से 3 महीने के अंदर शुरू होना ही चाहिए। अगर 3 महीने के अंदर वो काम शुरू नहीं हुआ तो वो एनओसी कैंसिल हो सकता है। पहले क्या हो रहा था कि एनओसी मिल रहा था लेकिन काम इतना डिले हो रहा था कि शुभ मुहूर्त काम असं लागतच नव्हता, पण या डिसिजन मुळे नक्की लवकरात लवकर काम सुरू होतील, आणि जे पेंडिंग काम आहेत त्यांचं सुद्धा मुहूर्त लागेल। सो ये नया डिसिजन महानगरपालिका की तरफ से लिया गया है। सो आई होप की इस डिसिजन से तुम्ही अपने शहर में जो पेंडिंग काम है वो वक्त पर मुकम्मल हो जाएगी और एक स्मार्ट सिटी के रूप में संभाजीनगर एक निखर के सामने आएगा। सो थैंक यू महानगरपालिका फॉर दिस डिसिजन एंड स्टे ट्यून।

0: your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology, so MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
2: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
1: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
2: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
1: MGM University, Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब direct industry and job ready बनना। Visit mgmu.ac.in or call 9230-877-84.
3: तुझा अजूनही decide झाला नाही?
4: झालं रे, मी MGM University म्हणजेच MGM University Institute of Management and Research ला admission घेणार आहे।
3: तिथे कोणते कोणते courses आहेत?
4: BBA, BCom, MBA, Finance, HR, Hospital Management, PG डिप्लोमा, एमकॉम आणि एक वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह MBA सुद्धा। याशिवाय तज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरंच काही।
3: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668783 89 वर किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या। MGM युनिव्हर्सिटी, तुमच्या यशाचा मार्ग।

0: आम आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि खाए तो क्या खाए। और जो कोई कहता है कि हम बहुत शुद्ध खाना बनाते हैं, हमारे प्रोडक्ट बहुत शुद्ध होते, उनके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अशुद्ध होते, ऐसा नजर आ रहा है। अब अपने चिकलठाना में ना कुछ दिन पहले FDA ने कार्रवाई किया, वो कहते थे कि हमारा घी और पनीर एकदम शुद्ध है, शुद्ध दुधापासून हे शुद्ध पदार्थ तयार करण्यात आलेला आहे, जेणेकरून तुमचं आरोग्य नीट राहावं, ऐसा उनका कहना था। एंड जब FDA ने वहां पर कार्रवाई किया तो पता चला कि हे शुद्ध सगळं अशुद्ध आहे। भेसळ युक्त पनीर आणि तूप 1000 लिटरच्या प्रमाणात त्यांना तिथं सापडलंय। तर यातून अंदाज घ्या की आपल्या शहरात आपण आतापर्यंत जे काही प्रोडक्ट खात होतो ते किती अशुद्ध होते आणि भेसळ युक्त होते, जे की आपल्या पोटात गेलेत आणि त्याने अनेक प्रॉब्लेम सुद्धा आपल्याला फेस करावे लागले असतील। सोयाबीन तेल, भेसळ युक्त गाईचं तूप, क्रीम, पनीरचा साठा, असे अनेक पदार्थ त्यांनी सील केलेत आणि त्याला डिस्ट्रॉय सुद्धा करण्यात आलेले आहेत। और इस डेरी से जिस जिस दुकानों पर माल सप्लाय हो रहा था उन दुकानों से भी माल पकड़ा गया, उन दुकानों से भी वो माल पकड़ा गया है। अब सवाल यही उठता है कि अब हम खाए तो क्या खाए, जहां वहां पर बस मिलावटी खाना मिल रहा है। बट FDA को थैंक यू कहना ही पड़ेगा, पिछले कुछ महीने से जिस तरीके से वो मिलावटी खानों के ऊपर से पर्दाफाश कर रहे हैं ना, काबिले तारीफ है। अब इससे पता तो चल रहा है कि कितना कुछ हम मिलावटी खा रहे थे। जितना मिलावटी प्यार आज के जमाने में नहीं मिलता है, उससे ज्यादा मिलावटी खाना ही मिल रहा है आज के जमाने में। खैर, प्यार या खाना, मिलावटी चाहिए या असली चाहिए, सोच लीजिए एंड बाकी सुनते रहिए।
1: क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर। आपण इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन किंवा जपानीज शिकायचं स्वप्न पाहताय की अरेबिक, संस्कृत, मराठी आणि उर्दू यांसारख्या भाषांमध्ये निपुण व्हायचंय,
4: तर मग MGM युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन अँड फॉरेन लँग्वेज मध्ये आपलं स्वागत आहे।
5: अवेलेबल कोर्सेस BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इन इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू अँड संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन क्रिएटिव्ह रायटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जपानीज, पर्शियन अँड ट्रान्सलेशन, या सोबतच विविध सर्टिफिकेट कोर्सेस सुद्धा उपलब्ध।
4: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, आजच भेट द्या www.mgmu.ac.in
5: किंवा कॉल करा 9763679245, 9665353515 और 9371714259।

उन 50 रुपए में क्या मिलता है भाई? बहुत कुछ मिलता है आपके गाड़ी के लिए, समझे? Myself, RJ, and you're listening MGM 90.8 FM. देखो, सबसे पहले बात करते हैं HSRP नंबर प्लेट की। प्रशासन कहेगा थक गया था कि यार बिठाइएगा गाड़ियों पर नंबर प्लेट, लेकिन कुछ लोगों ने अब तक भी नहीं बिठाई, और जिन लोगों ने बिठाई है ना, तो उनके लिए एक स्पेशल प्लान अब HSRP नंबर प्लेट वाला आया है। दैट्स कॉल्ड HSRP प्रोटेक्शन प्लान। जैसे मोबाइल के अलग अलग प्लान होते हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारे स्कीम्स मिलते हैं, और उसी तरीके से HSRP नंबर प्लेट वालों को भी एक स्कीम मिलने वाली है इस प्लान में, जिसमें 49 रुपीज आप एक्स्ट्रा पे करके प्लान ले सकते हो। अब 49 में क्या क्या आने वाला इस प्लान में? नंबर प्लेट से नुकसान झालं किंवा नंबर प्लेट चोरी गेली तर ते पुन्हा तुम्हाला बनवून मिळणार आहे, ते पण एकदम फ्री मध्ये। यासोबतच तुम्ही कुठे जात आहात आणि गाडीचा अचानक पेट्रोल संपले तर तुमच्यापर्यंत पेट्रोल पोहोचण्याची सुविधा या प्लान मध्ये आहे। हो हो, एकदम खरं सांगतोय, अक्सर ऐसा होता है हम घर से निकलते है और पता ही नहीं चलता यार गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं, और आधे रास्ते तक जाने के बाद पता चलता है कि यार गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और पेट्रोल पंप तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर दूर है। तब क्या करें? फिर दोस्त को कॉल करना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है। लेकिन आपने 49 रुपीज का HSRP प्रोटेक्शन प्लान लिया तो आपकी गाड़ी तक आपको पेट्रोल मिल जाएगा, 15 किलोमीटर एरिया में ये वैलिड रहेगा। तर बघा इतक्या सर्व सोयी सुविधा है या एक नंबर प्लेट मध्ये। सो अभी भी अगर आपने नंबर प्लेट नहीं बिठाई है तो बिठाओ भाई, कितना लेट करोगे? और जिन लोगों ने नंबर प्लेट बिठाई है और उन्हें ये प्लान लेना है तो आप खरीद सकते हो, बस 49 रुपीज ये पे करना है। मैं तो लेने ही वाला हूँ ये प्लान, क्योंकि मेरी गाड़ी का पेट्रोल अक्सर जाने अनजाने में कहीं ना कहीं खत्म हो ही जाता है, तो ये प्लान का फायदा होगा, आप भी उठाइएगा फायदा। एंड बाकी सुनते रहिएगा।

0: तुझा इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम.
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 71 78 44.
2: क्या वैसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University Institute Chhatrapati Sambhajinagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatach new advanced technology hi shikhnyas milel. Shivay vividha namankit companies madhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidco. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

स्पैम्स कॉल से तो हम सभी लोग परेशान हो गए, दिन में से 10 एक कॉल तो आते ही है। हेलो, मैसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और इस स्पैम्स कॉल कैसे रोके इसके ऊपर तो अभी गवर्नमेंट काम कर रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीने के अंदर इंडिया में तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा स्पैम्स कॉल रजिस्टर हो गए हैं। और इस स्पैम्स कॉल को जैसे स्कैम भी हो रहा है, अपने शहर में भी लोगों के अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो गए एक क्लिक की वजह से। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्पेशली अपने मम्मी पापा दादा दादी इनको ये बात बताइएगा कि बैंक हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, पुलिस हो, इनकी तरफ से अगर आपको कोई कॉल आ रहा हो और वो कॉल कुछ तो गड़बड़ वाला आपको नजर आ रहा हो तो उस कॉल के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। एंड अननोन नंबर से आने वाला वीडियो कॉल तो बिल्कुल भी मत रिसीव कीजिएगा। अभी एक फ्रॉड चल रहा है जिसमें डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, और जो लोग अवेयर नहीं है इस बात से तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार पुलिस ने मुझे डिजिटल अरेस्ट किया है, सामने पुलिस बैठी है और वो कह रही है कि यार मेरे नाम पर इतना इतना केस है, आपको एक केस से बाहर निकलना है तो पैसा पे करना पड़ेगा। तो ऐसे कॉल के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। खुद पुलिस भी कहती है कि पुलिस डिपार्टमेंट में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। एंड बैंक भी खुद कहता है कि हम फोन के ऊपर किसी भी ग्राहक से ओटीपी आधार कार्ड नंबर नहीं मांगते। सो बी सेफ, बी केयरफुल। देखो यूथ को तो ये सब कुछ पता है और अपने मम्मी पापा को ये सारी चीजें नहीं पता है, अपने दादा दादी को नहीं पता है, तो उन्हें भी बताइएगा कि ऐसे कॉल्स मैसेज सब फ्रॉड होते हैं, तो इनको रिसीव मत कीजिए और कोई भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करे। और एक नंबर याद रखिए, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। और बी सेफ, बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड।

लगता है कि फिल्म और सीरीज ही एंटरटेनमेंट का एक सोर्स हो सकता है, लेकिन नहीं, अब एक और सोर्स आ गया है मार्केट में, हर तरफ यही चल रहा है। हेलो, मायसेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री हो गई है माइक्रो ड्रामास की, या ऐसे शॉर्ट ड्रामास होते हैं जिनके एपिसोड तकरीबन 1 से 5 मिनट के होते, एकदम फास्ट स्टोरी, इमोशनल ट्विस्ट और मोबाइल फ्रेंडली फॉर्मेट की वजह से ये बहुत फेमस हो रहा है और इसका एक अलग ऑडियंस बेस तैयार हो गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री ने एक साल में 2000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट बनाया है और माइक्रो ड्रामा ऐप 450 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हो रहे हैं और लगभग 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स है। एंड इस माइक्रो ड्रामा का सबसे बड़ा रीजन है मोबाइल फर्स्ट ऑडियंस। लोगों के पास लंबी वेब सीरीज देखने का टाइम नहीं होता है, लेकिन 2 से 3 मिनट में सस्पेंस, रोमांस या फैमिली ड्रामा देखने का उनके पास टाइम होता है और ये लोग बहुत पसंद भी कर रहे थे। तो ये नई नई इंडस्ट्री आई है माइक्रो ड्रामा में। एंड एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इंडस्ट्री के अंदर अब शाहरुख खान की कंपनी भी एंट्री करने वाली है और इसी के साथ यशराज स्टूडियोज, जियो हॉटस्टार, Amazon Prime, Cuckoo TV and Drama Box, ये भी प्लेटफॉर्म इस माइक्रो ड्रामा सीरीज में एंट्री मार चुकी है और इनकी भी छोटे छोटे माइक्रो ड्रामा शुरू हो गए हैं। तो जिस तरीके से ट्रेंड बदलता है, ऑडियंस का इंटरेस्ट भी बदलता है और सीरीज के साथ साथ माइक्रो ड्रामा का भी ऑडियंस बदलता ही है। एंड इससे एक फायदा है, जो कॉन्टेंट क्रिएटर है, जो एक्टर है, तो उनको माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री में भी एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वैसे आपने इन दिनों कौन सा माइक्रो ड्रामा देखा है क्या, जरा बताइए, मुझे भी सजेस्ट कीजिएगा कि कौन सा देखूं, क्योंकि मैंने अब तक ज्यादा देखा नहीं है। डीएम कीजिएगा इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। बाकी स्टे ट्यून।

0: इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री विजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891-7844-44.
2: क्या ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University Institute Kochitrapati Sambhajinagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatach new advanced technology hi shikhnyas milel. Shivay vividha namankit kampanyanmadhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidko. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, एक वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है आरजे अदनान। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो, तो मेरी जान मैं हूं आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप बेझिझक मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती है। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आ ही गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

प्रेशर में आके शादी तो नहीं कर रही हूँ, एज इन कोई अफेयर हो, और क्योंकि तुम्हारी फैमिली चाहती है

वेलकम टू MGM 90.8 FM RJ अदनान तुमच्या सोबत आहे इन द शो ऑल इज वेल RJ अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन MGM 90.8 FM एंड शो के स्टार्टिंग में हम एक गेम खेलते हैं जिस गेम का नाम है कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी। और इसमें मैंने आपको एक पहेली पूछा था, वो कुछ ऐसी थी कि वो कौन है जिसके पास कभी तो दर्जनों कपड़े होते हैं और कभी एक भी नहीं होता है। और इसका जवाब है वॉशिंग मशीन। जी हाँ, जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो बहुत सारे कपड़े होते हैं और जब काम खत्म होने के बाद इसमें एक भी कपड़ा नहीं होता है। सिंपल सा लॉजिक था इसका और सिंपल सा जवाब था एंड जवाब दिया है श्वेता जाधव ने। सो कॉन्ग्रेचुलेशन श्वेता जाधव जी, आज आप विनर बन चुकी हो, आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। सो श्वेता जी के नाम ये आज का गिफ्ट करते हैं। आई होप कि आपको भी ऐसे गिफ्ट जीतने की इच्छा होगी। तो मेरे पहेलियों के जवाब देते रहिए और सुनते रहिए।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
2: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर.
3: ऑटोमेशन के जमाने में एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है. इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है. सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है.
2: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
3: MGM University, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84.
4: तुझा अजूनही डिसाइड झालं नाही?
5: झालं रे, मी MGM University म्हणजेच MGM University इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च ला ऍडमिशन घेणार आहे.
4: तिथे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत?
5: BBA, BCom, MBA, फायनान्स, HR, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, PG डिप्लोमा, MCom आणि एक वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह MBA सुद्धा. याशिवाय तज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरंच काही.
4: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668783891 वर किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या. MGM युनिव्हर्सिटी, तुमच्या यशाचा मार्ग.

हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया। All is well. RJ and Nanak morning show. Freshness live radio ka flow. On MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है on MGM 90.8 FM. बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ Adnan आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। DM कीजिए का इंस्टा पर RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
2: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर.
1: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है. इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है. सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है.
2: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
1: MGM University, Department of Instrumentation and Control Engineering, जहां पढ़ाई मतलब direct industry and job ready बनना. Visit mgmu.ac.in or call 9230-877-84.
3: तुझा अजूनही decide झाला नाही?
4: झाला रे, मी MGM University म्हणजेच MGM University Institute of Management and Research ला admission घेणार आहे.
3: इथे कोणते courses आहेत?
4: BBA, BCom, MBA, Finance, HR, Hospital Management, PG डिप्लोमा, MCom आणि एक वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह MBA सुद्धा. याशिवाय तज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरच काही.
3: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668783 89 वर किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या. MGM University, तुमच्या यशाचा मार्ग.

0: जांबाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है।

0: रेडियो MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start.

0: dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology, so MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
2: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर.
3: ऑटोमेशन के जमाने में एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है. इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है. सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है.
2: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
3: MGM University, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84.
4: मी MGM University म्हणजेच MGM University Institute of Management and Research ला ऍडमिशन घेणार आहे.
5: इथे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत?
4: BBA, BCom, MBA, Finance, HR, Hospital Management, PG Diploma, MCom आणि एक वर्षाचा Executive MBA सुद्धा. याशिवाय तज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरंच काही.
5: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668783 89 वर किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या. MGM University, तुमच्या यशाचा मार्ग.

0: क्या दूंगा
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप मिल जाता है। कहना अनुराधा।
0: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
2: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: हर दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है।

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका सोमवार अच्छा रहा होगा। यार सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और दिन भर की भागदौड़ के बाद अब समय है थोड़ा आराम करने का, मुस्कुराने का और अपने पसंदीदा गानों का आनंद लेने का। शाम का ये खूबसूरत समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताने का सबसे अच्छा मौका होता है। चाहे आप घर पर हो, ऑफिस से लौट रहे हो या सफर में हो, हम आपके साथ हैं बेहतरीन गानों और शानदार मनोरंजन के साथ। आज के इस खास प्रोग्राम में हम सुनेंगे एक से बढ़कर एक शानदार गाने, कुछ दिलचस्प बातें और कुछ ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएगी।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। एक नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, आज है सोमवार, और बहुत से लोग सोमवार का नाम सुनते ही थोड़ा थका हुआ या फिर बोझिला महसूस करते हैं, बोझ भरा दिन महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, सोमवार सिर्फ सप्ताह का पहला दिन नहीं बल्कि नई शुरुआत करने का एक सुनहरा मौका भी होता है। अगर पिछले हफ्ते कुछ अधूरा रह गया हो, कोई गलती हो गई हो, कोई सपना पूरा नहीं हो पाया हो, तो चिंता मत कीजिए। हर सोमवार हमें एक नया अवसर देता है कि हम फिर से कोशिश करें और अपने गोल की ओर थोड़ा आगे बढ़े। याद रखिए, बड़ी सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती, वो छोटे छोटे प्रयासों से बनती है जो हम हर दिन करते हैं। इसलिए आज खुद से एक वादा जरूर कीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे। मेरा मतलब है, आप अपना बेस्ट देंगे। मुस्कुराइए, सकारात्मक सोचिए और विश्वास रखिए कि आपका हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा, क्योंकि जो लोग लगातार आगे बढ़ते हैं, सफलता एक दिन उनके कदम जरूर चूमती है। तो दोस्तों, इस सोमवार को उत्साह, ऊर्जा और नए सपनों के साथ शुरू कीजिए, और हम आपके साथ हैं बेहतरीन गानों और अच्छी बातों के साथ। तो चलिए, अब इसी खूबसूरत शाम को और भी खास बनाते हैं एक शानदार गाने के साथ। आप सुनते रहिए आपका फेवरेट शो दिल से, जहां हर दिन की शुरुआत होती है एक नई उम्मीद के साथ। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। सोमवार की शाम है और इस वक्त शहर की सड़कों पर ट्रैफिक अपने पूरे रंग में दिखाई दे रहा है। कहीं लंबी गाड़ियों की कतार है तो कहीं सिग्नल पर इंतजार है। ऑफिस से घर लौटते हुए बहुत से लोग इस समय ट्रैफिक की वजह से थोड़ा परेशान और थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी इस वक्त सड़क पर हो तो एक छोटी सी बात याद रखिए, ट्रैफिक में फंसना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस समय अपना मूड अच्छा रखना जरूर हमारे ही हाथ में है। बार बार हॉर्न बजाने से रास्ता जल्दी नहीं खुलेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आपका सफर जरूर आसान होगा। गहरी सांस लीजिए, आराम से ड्राइव कीजिए और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए। सोमवार की शुरुआत भले ही व्यस्त रही हो, लेकिन दिन खत्म होने से पहले खुद को तनाव से थोड़ा दूर रखिए। घर पहुंचकर आपका परिवार आपकी मुस्कान का इंतजार कर रहा है, इसीलिए ट्रैफिक की टेंशन को रास्ते में ही छोड़ दीजिए और जब तक आप अपने घर नहीं पहुंच जाते तब तक हम आपके साथ हैं शानदार गानों और बेहतरीन साथ के साथ। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, सुरक्षित ड्राइव कीजिए और इस ट्रैफिक भरी शाम को संगीत के साथ थोड़ा आसान बनाइए। चलिए अब सुनते हैं खूबसूरत गाना ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
2: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर.
1: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है. इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है. सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है.
2: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
1: MGM University, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84.
3: मी MGM University म्हणजेच MGM University Institute of Management and Research ला ऍडमिशन घेणार आहे.
4: इथे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत?
3: BBA, BCom, MBA, Finance, HR, Hospital Management, PG Diploma, MCom आणि एक वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह MBA सुद्धा. याशिवाय तज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरंच काही.
4: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668783 89 वर किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या. MGM University, तुमच्या यशाचा मार्ग.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज बात करते हैं जेंजी की, यानी आज की युवा पीढ़ी की। अक्सर उनके बारे में कई बातें सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पीढ़ी बहुत जल्दी हार मान लेती है, कुछ कहते हैं कि इन्हें सिर्फ मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया पसंद है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? दोस्तों, हर पीढ़ी की अपनी सोच और अपना एक तरीका होता है। जेंजी टेक्निक के साथ बड़ी हुई है, इसीलिए उनके काम करने और सीखने का तरीका थोड़ा अलग है। ये नई चीजें जल्दी सीखते हैं, अपने विचार खुलकर रखते हैं और अपने सपनों को लेकर काफी स्पष्ट रहते हैं। एक और बड़ी गलतफहमी है कि ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते। सच तो ये है कि ये मेहनत जरूर करते हैं, लेकिन साथ ही अपने मानसिक स्वास्थ्य, परिवार और निजी जीवन को भी महत्व देना जानते हैं। इनके लिए सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि जीवन में संतुलन भी जरूरी है। हर पीढ़ी की तरह जेंजी में भी खूबियां है और चुनौतियां भी, इसलिए किसी भी पीढ़ी को सिर्फ कुछ धारणाओं के आधार पर समझना सही नहीं है। बेहतर यही है कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और अनुभव या फिर नई सोच का एक अच्छा मेल बनाएं। तो दोस्तों, अगली बार आप जब जेंजी के बारे में कोई राय बनाएं तो पहले उनकी सोच और उनकी दुनिया को समझने की कोशिश जरूर कीजिए। फिलहाल इसी खूबसूरत विचार के साथ आगे बढ़ते हैं कुछ शानदार गानों की ओर। इन द शो दिल से ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: फक्त इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम.
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप्स.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 71 78 44.
2: क्या ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University Institute Kochitrapati Sambhajinagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatach new advanced technology hi shiknyas milel. Shivay vividha namankit companyan madhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidko. Visit mgmu.ac.in. Call 950-308-2913.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अक्सर हम सोचते हैं कि जेन जी यानी आज की युवा पीढ़ी बस मोबाइल पर रील्स देखती रहती है, सोशल मीडिया पर समय बिताती है और अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। आज की जेन जी ने बार बार साबित किया है कि अगर मौका मिले तो यही युवा नए विचारों के साथ समाज और देश में बड़ा बदलाव भी ला सकते हैं। ये नई टेक्निक को समझते हैं, नए समाधान खोजते हैं और अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने रखते हैं। कई युवा आज स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, कई नई खोज कर रहे हैं, सामाजिक अभियानों से जुड़ रहे हैं और अपने काम से लोगों की जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। ये सिर्फ सपने ही नहीं देखते बल्कि उन्हें सच करने की हिम्मत भी रखते हैं। हाल ही में आपने देखा भी होगा इसका बड़ा एग्जाम्पल। हाँ, इनके हाथ में मोबाइल जरूर है लेकिन उसी मोबाइल के जरिए ये सीख भी रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और अपने हुनर को दुनिया तक पहुँचा भी रहे हैं। इसीलिए सिर्फ कुछ सेकेंड की रील्स देख कर पूरी पीढ़ी को समझ लेना सही नहीं होगा। आज का जेन जी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है बल्कि अपने विचारों, मेहनत और जुनून से भविष्य को भी आकार दे रहा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी युवा को मोबाइल पर व्यस्त देखें तो ये भी सोचिए कि शायद यही युवा कल किसी बड़े बदलाव का कारण बने। इसी सकारात्मक सोच के साथ अब बढ़ते हैं कुछ शानदार गानों की ओर। इन द शो दिल से, जहां हर सोच को मिलता है एक नया नजरिया। ओनली ऑन एमजी मराठी। पौने रिफिल्म साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। दोस्तों, जिंदगी हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। उन्हीं सीखों में से एक बहुत बड़ी सीख है, कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए। अक्सर हम किसी इंसान को उसके कपड़ों, उम्र, पढ़ाई, नौकरी या उसके वर्तमान हालात से पहचानने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि किसी की असली क्षमता का अंदाजा सिर्फ देखकर नहीं लगाया जा सकता। आज जो व्यक्ति साधारण दिखाई देता है, वही कल बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वही आने वाले समय में कई लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है। इतिहास और हमारे आसपास ऐसी कई कहानियां हैं जहां लोगों ने कठिन परिस्थितियों से निकलकर बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। अगर उस समय किसी ने उन्हें कम आंका होता तो शायद उनकी काबिलियत को कहीं पहचाना ही नहीं जाता। इसलिए हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास बात जरूर है। किसी को मौका चाहिए, किसी को विश्वास और किसी को सिर्फ थोड़ा सा साथ। याद रखिए, जिंदगी में कभी भी किसी को छोटा मत समझिए। समय बदलते देर नहीं लगती और कई बार वही लोग सबसे आगे निकल जाते हैं जिनसे लोगों को सबसे कम उम्मीद होती है। तो दोस्तों, दूसरों की काबिलियत पर शक मत कीजिए, उसके बजाय उन्हें मोटिवेट कीजिए और सम्मान दीजिए। इसी खूबसूरत सोच के साथ बढ़ते हैं कुछ अगले गानों की ओर। इन द शो दिल से, जहां हर बात में छुपा होता है एक नया संदेश। ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
2: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
3: ऑटोमेशन के जमाने में एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
2: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
3: MGM University, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
4: तुझा अजूनही डिसाइड झालं नाही?
5: झालं रे, मी MGM University म्हणजेच MGM University इंस्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च ला ऍडमिशन घेणार आहे।
4: तिथे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत?
5: BBA, BCom, MBA, फायनान्स, HR, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, PG डिप्लोमा, MCom आणि एक वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह MBA सुद्धा। याशिवाय तज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरंच काही।
4: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668783899 वर किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या। MGM युनिव्हर्सिटी, तुमच्या यशाचा मार्ग।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। देखते ही देखते सोमवार की एक खूबसूरत शाम अब विदा लेने को तैयार है। दिन भर की भागदौड़, काम की जिम्मेदारियां और नई शुरुआत का ये दिन अब धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। कई लोगों के लिए सोमवार थोड़ा व्यस्त रहा होगा तो कई लोगों ने इस नए सप्ताह की शुरुआत नए उत्साह के साथ की होगी, नए सपनों के साथ की होगी। लेकिन चाहे दिन कैसा भी बीता हो, एक बात जरूर याद रखिए, आपके इस सप्ताह का पहला कदम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है आपने। अगर आज सब कुछ आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ तो चिंता मत कीजिए, अभी तो पूरा हफ्ता बाकी है। हर नया दिन अपने साथ नए अवसर लेकर आता है, तो आज की छोटी छोटी खुशियों को याद कीजिए, अपनी उपलब्धियों की सराहना कीजिए और कल के लिए एक नई उम्मीद अपने दिल में रखिए। दोस्तों, जिंदगी भी एक सफर की तरह है, हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है और हर शाम हमें थोड़ा और मजबूत बनाकर जाती है। इसी उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ अब हम सोमवार की शाम को अलविदा कहते हैं। दुआ है कि आने वाला पूरा सप्ताह आपके लिए खुशियाँ, सफलता और ढेर सारी मुस्कानी लेकर आए। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए MGM नारीपोनेटिव फिल्म साथ है तो बात है।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि पदवी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा व्हिजिट mgmu.ac.in।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर। आपण इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन किंवा जपानी शिकायचं स्वप्न पाहताय की अरेबिक, संस्कृत, मराठी आणि उर्दू यांसारख्या भाषांमध्ये निपुण व्हायचंय,
4: तर मग MGM युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन अँड फॉरेन लँग्वेज मध्ये आपलं स्वागत आहे।
5: अवेलेबल कोर्सेस BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इन इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू अँड संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन क्रिएटिव्ह रायटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जपानीज, पर्शियन अँड ट्रान्सलेशन। यासोबतच विविध सर्टिफिकेट कोर्सेस सुद्धा उपलब्ध।
4: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, आजच भेट द्या www.mgmu.ac.in
5: किंवा कॉल करा 9763679245, 9665353515 और 9371714259।

ऊपर से तो पैसा आता है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन काम शुरू ही नहीं होता, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। हेलो, माय सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। गवर्नमेंट कहती है कि यार हमने तो आपके नेताओं को पैसा दिया है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन काम क्यों नहीं शुरू हुआ ये आम आदमी को पता ही नहीं चलता था। यू नो व्हाट, पिछले 3 साल के अंदर अपने शहर के डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े नेताओं को, आमदार खासदारों को तकरीबन 200 करोड़ से भी ज्यादा गवर्नमेंट फंड आया है, और काम धीरे धीरे शुरू है, और कुछ काम बहुत पेंडिंग है, और काम शुरू होते लेकिन बहुत लेट काम शुरू होते, पेंडिंग रहते हैं। एंड देखो, कोई भी डेवलपमेंट का काम अगर शहर में करना है तो महानगर पालिका की उनको परमिशन लेना कंपलसरी है, दैट्स कॉल्ड एनओसी। अब एनओसी क्या होता है पता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप कोई भी काम आप कर सकते हैं। एंड एनओसी मिलने के बाद भी काम डिले हो रहा था, तो महानगर पालिका ने एक डिसीजन लिया है कि जिस काम के लिए जिसको एनओसी दिया जाएगा वो काम एनओसी मिलने से 3 महीने के अंदर शुरू होना ही चाहिए। अगर 3 महीने के अंदर वो काम शुरू नहीं हुआ तो वो एनओसी कैंसिल हो सकता है। पहले क्या हो रहा था कि एनओसी मिल रहा था लेकिन काम इतना डिले हो रहा था कि शुभ मुहूर्त काम असं लागतच नव्हता, पण या डिसीजन मुळे नक्कीच लवकरात लवकर काम सुरू होतील आणि जे पेंडिंग काम आहेत त्यांचा सुद्धा मुहूर्त लागेल। सो ये नया डिसीजन महानगर पालिका की तरफ से लिया गया है। सो आई होप कि इस डिसीजन से तुम्ही अपने शहर में जो पेंडिंग काम है वो वक्त पर मुकम्मल हो जाएगी और एक स्मार्ट सिटी के रूप में संभाजीनगर एक निखर के सामने आएगा। सो थैंक यू महानगर पालिका फॉर दिस डिसीजन एंड स्टे ट्यून्ड।

0: के साथ।
1: फिलहाल आम आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि खाए तो क्या खाए। जो कोई कहता है कि हम बहुत शुद्ध खाना बनाते हैं, हमारे प्रोडक्ट बहुत शुद्ध होते हैं, उनके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अशुद्ध होते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। अब अपने चिकलठाना में ना कुछ दिन पहले FDA ने कार्रवाई किया। वो कहते थे कि हमारा घी और पनीर एकदम शुद्ध आहे, शुद्ध दुधापासून हे शुद्ध पदार्थ तयार करण्यात आलेले आहेत, जेणेकरून तुमचं आरोग्य नीट राहावं, ऐसा उनका कहना था। एंड जब FDA ने वहां पर कार्रवाई किया तो पता चला कि हे शुद्ध सगळं अशुद्ध आहे। भेसळ युक्त पनीर आणि तूप 1000 लिटरच्या प्रमाणात त्यांना तिथं सापडलंय। तर यातून अंदाज घ्या की आपल्या शहरात आपण आतापर्यंत जे काही प्रोडक्ट खात होतो ते किती अशुद्ध होते आणि भेसळ युक्त होते, जे की आपल्या पोटात गेलेत आणि त्याने अनेक प्रॉब्लेम सुद्धा आपल्याला फेस करावे लागले असतील। सोयाबीन तेल, भेसळ युक्त गाईचं तूप, क्रीम, पनीरचा साठा, असे अनेक पदार्थ त्यांनी सील केलेत आणि त्याला डिस्ट्रॉय सुद्धा करण्यात आलेले आहेत। और इस डेरी से जिस जिस दुकानों पर माल सप्लाय हो रहा था उन दुकानों से भी माल पकड़ा गया, उन दुकानों से भी वो माल पकड़ा गया है। अब सवाल यही उठता है कि अब हम खाए तो क्या खाए, जहां वहां पर बस मिलावटी खाना मिल रहा है। बट FDA को थैंक यू कहना ही पड़ेगा, पिछले कुछ महीने से जिस तरीके से वो मिलावटी खानों के ऊपर से पर्दाफाश कर रहे हैं ना, काबिले तारीफ है। अब इससे पता तो चल रहा है कि कितना कुछ हम मिलावटी खा रहे थे। जितना मिलावटी प्यार आज के जमाने में नहीं मिलता है, उससे ज्यादा मिलावटी खाना ही मिल रहा है आज के जमाने में। खैर, प्यार या खाना, मिलावटी चाहिए या असली चाहिए, सोच लीजिए एंड बाकी सुनते रहिए।

उन 50 रुपए में क्या मिलता है भाई? बहुत कुछ मिलता है आपके गाड़ी के लिए, समझे?

देखो सबसे पहले बात करते हैं HSRP नंबर प्लेट की। प्रशासन कह के थक गया यार, बिठाइएगा गाड़ियों पर नंबर प्लेट, लेकिन कुछ लोगों ने अब तक भी नहीं बिठाई, और जिन लोगों ने बिठाई है ना, तो उनके लिए एक स्पेशल प्लान अब HSRP नंबर प्लेट वाला आया है। दैट्स कॉल्ड HSRP प्रोटेक्शन प्लान। जैसे मोबाइल के अलग अलग प्लान्स होते हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारे स्कीम्स मिलते हैं, और उसी तरीके से HSRP नंबर प्लेट वालों को भी एक स्कीम मिलने वाली है इस प्लान में, जिसमें 49 rupees आप एक्स्ट्रा पे करके प्लान ले सकते हो। अब 49 में क्या क्या आने वाला है इस प्लान में, नंबर प्लेट से नुकसान झालं किंवा नंबर प्लेट चोरी गेली तर ते पुन्हा तुम्हाला बनवून मिळणार आहे, ते पण एकदम फ्री मध्ये। यासोबतच तुम्ही कुठे जात आहात आणि गाडीचं अचानक पेट्रोल संपले तर तुमच्यापर्यंत पेट्रोल पोहोचण्याची सुविधा या प्लान मध्ये आहे। हो हो एकदम खरं सांगतोय, अक्सर ऐसा होता है हम घर से निकलते हैं और पता ही नहीं चलता यार गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं, और आधे रास्ते तक जाने के बाद पता चलता है कि यार गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और पेट्रोल पंप तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर दूर है। तब क्या करें, फिर दोस्त को कॉल करना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है। लेकिन आपने 49 rupees का HSRP प्रोटेक्शन प्लान लिया तो आपकी गाड़ी तक आपको पेट्रोल मिल जाएगा, 15 किलोमीटर एरिया में ये वैलिड रहेगा। तो बघा इतक्या सर्व सोयी सुविधा है या एक नंबर प्लेट मध्ये। सो अभी भी अगर आपने नंबर प्लेट नहीं बिठाई है तो बिठाओ भाई, कितना लेट करोगे। और जिन लोगों ने नंबर प्लेट बिठाई है और उन्हें ये प्लान लेना है तो आप खरीद सकते हो, बस 49 rupees ये पे करना है। मैं तो लेने ही वाला हूँ ये प्लान, क्योंकि मेरी गाड़ी का पेट्रोल अक्सर जाने अनजाने में कहीं ना कहीं खत्म हो ही जाता है, तो प्लान का फायदा होगा, आप भी उठाइएगा फायदा। एंड बाकी सुनते रहिएगा।

0: your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology, so MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
2: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर.
1: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है. इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है. सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है.
2: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
1: MGM University, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84.
3: तुझा अजूनही डिसाइड झालं नाही?
4: झालं रे, मी MGM University म्हणजेच MGM University इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च ला ऍडमिशन घेणार आहे.
3: इथे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत?
4: BBA, BCom, MBA, Finance, HR, Hospital Management, PG डिप्लोमा, MCom आणि एक वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह MBA सुद्धा. याशिवाय तज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरंच काही.
3: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668783 89 वर किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या. MGM युनिव्हर्सिटी, तुमच्या यशाचा मार्ग.
5: एक सवाल पूछ लूं डायरेक्टली
6: जी.
5: फैमिली प्रेशर में आके शादी तो नहीं कर रही हूँ, एज इन कोई अफेयर हो, और क्योंकि तुम्हारी फैमिली चाहती है इसलिए तुम उससे शादी कर रही हूँ.
7: एहसास की जो जुबान बन गए.
6: किसने कहा हमें आपसे शादी करनी है?

एक बात आपने नोटिस की होगी कि आपको अपने जानने पहचानने वाले लोग नहीं इतने कॉल नहीं करते जितने कॉल स्पैम कॉल आते हैं आपको. हेलो मायसेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम. एंड मेरे जैसे आप लोग भी परेशान हो गए होंगे स्पैम कॉल्स की वजह से. दिन में से 4-5 और तकरीबन 8 तो भी कॉल आपको आते ही है स्पैम के. काम का कुछ नहीं होता लेकिन सब स्पैम होते हैं. और एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक अब गवर्नमेंट का कहना है कि वो स्पैम कॉल रोकने के लिए काम कर रही है. एआई का यूज करते हुए जो कुछ तो गड़बड़े वाले जो नंबर होते हैं उनके ऊपर नजर रखी जा रही. अगर इन नंबर से बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं तो ये स्पैम कॉल है, तो ऐसे कॉल्स और ऐसे नंबर डीएक्टिवेट किए जा रहे हैं. अब स्पैम कॉल की वजह से ना तो स्कैम भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा बचना जरूरी है. अगर आपके पास भी कोई अननोन नंबर से कॉल आता हो और कुछ बैंक की डिटेल मांगता हो, ओटीपी, पिन, आधार कार्ड नंबर, ये सब कुछ मांगते हो, तो उनको कहना कि भाई पहली फुर्सत में तू निकल और कॉल कट कर देना और नंबर ब्लॉक कर देना. और कोई नंबर से आपको बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं तो इसकी कंप्लेंट आप डायरेक्टली संचार साथी इस वेबसाइट पर जाकर दर्ज कर सकते हो, या तो फिर साइबर क्राइम इस डिपार्टमेंट में जाकर भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो. और एक बहुत बड़ा स्कैम आजकल हो रहा है जिससे आपको बचना बहुत जरूरी है. और स्कैम की वजह से ना तो अपने शहर में भी बहुत सारे लोगों का बहुत सा नुकसान हो गया है. वो स्कैम क्या है वो बताऊंगा मैं आपको. लेकिन एक बात याद रखिए, जिस तरीके से आपकी क्रश आपका फोन इग्नोर करती है उसी तरीके से आप भी ऐसे स्पैम कॉल्स इग्नोर कीजिएगा. इतना याद रखिए ताकि आपको समझ में आ जाए. बाकी बी सेफ एंड लोड कराऊंगा कुछ ही देर में. तब तक स्टे ट्यून्ड.

0: लर्निंग आणि एनईपी 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट एमएनसी कोलॅबोरेशन्स इंडस्ट्री विजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप्स
0: लिमिटेड सीट्स आजच एमजीएम विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891 7444।
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए एमजीएम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो एमएससी स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546। एमजीएम यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट को छत्रपति संभाजीनगर।
3: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी या यूजी आणि पीजी साठी ऍडमिशन मिळवा। बीटेक आणि एमटेक कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी साठी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
4: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल। शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा।
5: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26। एमजीएम युनिव्हर्सिटी एंड 6 सिडको। व्हिजिट mgmu.ac.in। कॉल 9503 08 2913।

स्पैम्स कॉल से तो हम सभी लोग परेशान हो गए, दिन में से 10 एक कॉल तो आते ही है। हेलो, मैसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और इस स्पैम्स कॉल कैसे रोके इसके ऊपर तो अभी गवर्नमेंट काम कर रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीने के अंदर इंडिया में तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा स्पैम्स कॉल रजिस्टर हो गए हैं। और इस स्पैम्स कॉल को जैसे स्कैम भी हो रहा है, अपने शहर में भी लोगों के अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो गए एक क्लिक की वजह से। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्पेशली अपने मम्मी पापा दादा दादी इनको ये बात बताइएगा कि बैंक हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, पुलिस हो, इनकी तरफ से अगर आपको कोई कॉल आ रहा हो और वो कॉल कुछ तो गड़बड़ वाला आपको नजर आ रहा हो, तो उस कॉल के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। एंड अननोन नंबर से आने वाला वीडियो कॉल तो बिल्कुल भी मत रिसीव कीजिएगा। अभी एक फ्रॉड चल रहा है जिसमें डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, और जो लोग अवेयर नहीं है इस बात से तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार पुलिस ने मुझे डिजिटल अरेस्ट किया है, सामने पुलिस बैठी है और वो कह रही है कि यार मेरे नाम पर इतना इतना केस है, आपको एक केस से बाहर निकलना है तो पैसा पे करना पड़ेगा। तो ऐसे कॉल के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। खुद पुलिस भी कहती है कि पुलिस डिपार्टमेंट में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। एंड बैंक भी खुद कहता है कि हम फोन के ऊपर किसी भी ग्राहक से ओटीपी आधार कार्ड नंबर नहीं मांगते। सो बी सेफ, बी केयरफुल। देखो, यूथ को तो ये सब कुछ पता है और अपने मम्मी पापा को ये सारी चीजें नहीं पता है, अपने दादा दादी को नहीं पता है, तो उन्हें भी बताइएगा कि ऐसे कॉल्स मैसेज सब फ्रॉड होते हैं, तो इनको रिसीव मत कीजिए और कोई भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करे। और एक नंबर याद रखिए, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। और बी सेफ, बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड।

फिल्म और सीरीज ही एंटरटेनमेंट का एक सोर्स हो सकता है, लेकिन नहीं, अब एक और सोर्स आ गया है मार्केट में, हर तरफ यही चल रहा है। Hello myself RJ Adnan and you're listening MGM 90.8 FM और इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री हो गई है माइक्रो ड्रामास की, या ऐसे शॉर्ट ड्रामास होते हैं जिनके एपिसोड तकरीबन 1 से 5 मिनट के होते, एकदम फास्ट स्टोरी, इमोशनल ट्विस्ट और मोबाइल फ्रेंडली फॉर्मेट की वजह से ये बहुत फेमस हो रहा है और इसका एक अलग ऑडियंस बेस तैयार हो गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री ने एक साल में 2000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट बनाया है और माइक्रो ड्रामा ऐप 450 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हो रहे हैं और लगभग 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स है। एंड इस माइक्रो ड्रामा का सबसे बड़ा रीजन है मोबाइल फर्स्ट ऑडियंस। लोगों के पास लंबी वेब सीरीज देखने का टाइम नहीं होता है, लेकिन 2 से 3 मिनट में सस्पेंस, रोमांस या फैमिली ड्रामा देखने का उनके पास टाइम होता है और ये लोग बहुत पसंद भी कर रहे थे। तो ये नई इंडस्ट्री आई है माइक्रो ड्रामा में। एंड एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इंडस्ट्री

अंदर अब शाहरुख खान की कंपनी भी एंट्री करने वाली है। और इसी के साथ यशराज स्टूडियोज, जियो हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, कुकू टीवी एंड ड्रामा बॉक्स, ये भी प्लेटफॉर्म इस माइक्रो ड्रामा सीरीज में एंट्री मार चुके हैं और इनकी भी छोटे छोटे माइक्रो ड्रामा शुरू हो गए हैं। तो जिस तरीके से ट्रेंड बदलता है, ऑडियंस का इंटरेस्ट भी बदलता है और सीरीज के साथ साथ माइक्रो ड्रामा का भी ऑडियंस बदलता ही है। एंड इससे एक फायदा है, जो कंटेंट क्रिएटर है, जो एक्टर है, तो उनको माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री में भी एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसे आपने इन दिनों कौन सा माइक्रो ड्रामा देखा है क्या, जरा बताइए। मुझे भी सजेस्ट कीजिएगा कि कौन सा देखूं, क्योंकि मैंने अब तक ज्यादा देखा नहीं है। DM कीजिएगा इंस्टा पर RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर। बाकी स्टे ट्यून।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
2: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर.
3: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है. इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है. सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है.
2: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
3: MGM University, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784.
4: तुझा अजूनही डिसाइड झालं नाही?
5: झालं रे, मी MGM University म्हणजेच MGM University इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च ला ऍडमिशन घेणार आहे.
4: तिथे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत?
5: BBA, BCom, MBA, फायनान्स, HR, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, PG डिप्लोमा, MCom आणि एक वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह MBA सुद्धा. याशिवाय तज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरंच काही.
4: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668783899 वर किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या. MGM युनिव्हर्सिटी, तुमच्या यशाचा मार्ग.

0: research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
2: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर।
3: ऑटोमेशन के जमाने में एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
2: कॉलेज

0: जांबाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए एमजी 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।